0: Connect your dream. Connect your future. Stay. Connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षा गण्डकी चार पूरे घोड़ा वाकिंग डिपार्टमेंट भवन सँगै मोबाइल 98 62 32 84 93 र 98 62 38 93

जाना चाहता है और वो चला जाएगा, पर बात तो वही रहेगी ना कि मैं उसे जाने दूं या बस थोड़ा सा और इंतजार।

0: वास्तवी आ जिमी देश चाहिँ परिस्थिति ठङ्गी टुण्ड विदेश महँगा न मजुनी आपा शैक्षिक बेरोजगारी ड छगु ब्याचलर यहाँसँग ल्याम ल्यासेटा न हिङार ये जागिर लुकेटा न ठागु ड माङबा मिसा मस्त टोटाली वानटाए मन मरु खोजी नि सकैस्टा मखुले
1: ख
0: का छिटा आपा आपा सुभा मेकु मेकु हप्ताए ठङ्गी टु ज्या न छिटा झ्या मान्न है
1: आजिटा ठो ठो मेघ यङ्याता जुन शुक्ला गण्डकी एफएम निम्तो बिउ खानजी आपाति आभारी द्या बाजु ज्ञानारायण प्रति ठो मेघ सकसे थिनेमा ठो रेडियो ठो ज्या सानेमा एफएम थोइ लागि एक एक शुभाय
0: आतले छिपुसुङ अरिदेव न्यापूजा सेवाकोष दुलगौना साधन सभा सम्बन्धी खाँ यहाँडिल म्यान यहाँडिल म्याय रत्नाकार ए खान यहाँडिल मेको हप्ताए ठङ्गेटुङ खाँ काली वेगा सकसिंह बोनी च्याउ बजे शुक्ला गण्डी एफएम गुनेको थोप्ला खुग यहाँली साथ भेट हिनाप यहाँचाङ छिपुङ सकसटा एक एक शुभाय यहाँ भ्या ल्याटा जागा जेर्नु जिमी भ्या मकेमा जजलपा शुभाया।